के आख दी पत्ती जी दो मैं हाथ जोड़ के केड़ी मारा पुत बेतू लाया तोड़ के केड़ी मारा पुत बेतू लाया तोड़।

आपे सुरता आपे जाना आपे कर्तव्य है ताना तू दाता नाम परवाना ऐसा नाम निरंजन देओ हो जाचक तू अलख पेओ रहा माया मोह तटी नारा पुंडी कामना कामनी आरा राज रूप झूठा दिन चारा नाम मिले चानन अंधियारा चक छोड़ी सहसानी कोई

करता करे करावे सोए, शब्द मुवे मन मनते मारिया, ठाकरे मनो साचे तारिया, अवर ना सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम मन लागा जम लज्जाए कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूरण पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव न बिरथी जासी अनद करह तेरे दासा जप पूरण हुई आसा बिलावल।

मन मह चितवो चितवनी उद्यम करो उठनीत हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत। मन मह चितवो चितवनी उद्यम करो उठनीत हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का होए बिचारो तित कर गावहो सोहला सिवर हो सिर जनहारो। तुम गावहो मेरे निरपौ का सोहला हो वारी जित सोहला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े समालियन देखैगा देवनहार तेरे दाने की मत ना पवैत सदाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाव हो तेल देहो सज्जन असीसड़ियां ज्यो हो वै साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देहे आवन। राग आसा महला पहला शिय कर शिय गुर शिय उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तो ए रहाओ। विश्वे चसिया कड़िया पह

हे पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन बड्डा हे कर रंडौत पुन बड्डा हे रहाओ साखत हर साधना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चल है चुबै दुख पाव है जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम अदा।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुरते अमरदास रामदासी हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद समराओ श्री हर आए श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दे आवै ताई सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। हे निमाणिया दे मान नीताणिया दे तान नी ओटिया दी ओट सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है। आप जी दा कोटान कोट शुकर है जिन्हां ने अमृत वेले तो खुले दर्शन दारे दे के संगतां नूं निहाल कीता। दीवाना दी समाप्ति तो बाद आप जी दे पवित्र स्वरूप दी सेवा करदियां सुल्ला साहिब बाणी दे पाठ करदियां बेअंत भुल्लां बख्श देना जी। हुण कृपा करो अपने निज स्थाना ते विराजमान हो के संगतां नूं खुशियां बख्शो अमृत वेले दा जागना बख्शना अमृत वेले खुले दर्शन दे दारे दे के निहाल करना जी। सुख होवे नाम चिते आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला।

0: लागते दीवान है।
1: बोले सोनियाल
0: त्रियाकाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

कहें मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहें हम एक न जान्यो, श्री असमान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार, राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया, राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया, शब्दोत अगावो हरि केरा मान जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो, तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना, सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा है, घरता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कह मन वस्या वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मनाए वस्या, जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दिया ए वडियाईया, कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे, कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, साची लवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लवै बाजो क्या करे वेचारिया, तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा करवन वारिया, ए सुनो होर था ओना ही शब्द लाग सवारिया, कह नानक लवै बाजो क्या करे वेचारिया, आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलविख कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचै सवारिया, कह नानक इहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया, बाबा जिस तू दे सोई जन पावे, पावे ता सो जन देह जिसनो होर क्या करे वेचारिया, एक भरम भूले फिरे दह दे सिक नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे, कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे, आवो संत प्यारे हो अकथ की करै कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईए, तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म मन्या, पाईए हुक्म मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी, कह नानक सुनो संतो कथे हो अकथ कहानी, ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया, ए माया मोहनी जने अत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तने कीती जन ठगौली पाईया, कुर्बान कीता तिसै बिटो जन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटंब तुझे देखदा चलै नाही तेरे नाले, साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ, ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने, जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाने, आख है ता वेख है सब तू है जन जग तो पाया, कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया, स्वर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद पाए एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया, भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बेखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली, ज्यों तू चलाए है तिव चलै स्वामी होर क्या जाना, गुण तेरे जिव तू चलाए है तिवै चलै जिन्ना मार्ग पावे, कर कृपा जिन नाम लाए हे
से हर हर सदा त्यावे जिसनों कथा सुनाए हे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कह नानक सच्चे साहिब जो भावै तवै चलावे एहो सोहला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहला सतगुरु सुनाया एहो तिनका मन एहो तिनकै मन वसिया जिन धुरों लिखिया आया एक फिरै कनेरे करै गल्लां गल्ली किने ना पाया कह नानक शब्द सोहला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हरत्याया हरत्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यो पवित संगत सबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा न जाए न जाए सहसा कितै संजम रह करम कमाए सहसा जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन तो बहु शब्द लागो हर सो रहो चित लाए कह नानक गुरप्रसादी सहज उपजाए सहसा बजाए जियो मैले बहरो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बहरो निर्मल बहरो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले से बन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतरात्म में संभाले आप छड सदा रह परने गुरब नवर न जाने कोय कह नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते बेमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थै कोई पुछो बवेकियां जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सरबाणी जिनको नदर कर्म होवै हरदत न समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सारिंग पाणी कह नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आंख बखाणी हर हर नित कर करै रसना कहया कछु ना जानी चित जन काहर लया माया बोलन पैर वाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव शक्ता पो पाए कह करता आपे हुकुम बरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एक सस्यो लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन भाव विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते सेजन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अंदन हर लिव लागे जागत रहन विहानी माता के उधर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये मनो क्यों विसारिये विड़दाता जे अगन में आहार पहुंचावे ओसनो क्यों पोहे न सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिवापे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक के विड़दाता सो क्यों मनो विसारिये जैसी अगन उधर में है तैसी बाहर माया माया अगन सब एको जेही करता खेल रचाया जात सपाणा ता जमया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह बुझै भाउ दूजा लाया कह नानक गुरप्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसै विटों रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनों सिर सौंपी है विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए हर आप मुलक है भगत ना के नानका जिन हर पलै पाए हर रास मेरी मन वण जारा हर रास मेरी मन वण जारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपहो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलया जिन हर आपे पाणा
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿੱਤਾ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾ ਗਿਆ ਆਏ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ ਜਿਸ ਆਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰੇ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਉ ਪਾਏ। ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮਨ ਚਾਉ ਪਇਆ ਪ੍ਰਭਾਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ।

0: प्रभु के सिमरन काल पर हरे
1: प्रभु के सिमरन दुश्मन डरे
0: प्रभु सिमरत कछु बिघन न लागे
1: प्रभु के सिमरन अंदर जागे
0: प्रभु के सिमरन भौ न व्यापे
1: प्रभु के सिमरन दुख न संतापे
0: प्रभु का सिमरन साध के संग
1: सर्वदा नानक हर रंग
0: प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध
1: प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभु के सिमरन

0: नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै
1: महादास्त पीसर जीवै
0: अगन माहे होमत प्राण
1: कनक हैसर है वर पुंदान
0: न्योली कर्म करै बहु आसन
1: जैन मारे संजम असाधन
0: निमख निमख कर

0: जे प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे
1: कर को रख मन वाहे।
0: जे प्रसाद सुगंध ततन लाभ है
1: सिमरत परम गत पाहे।
0: जे प्रसाद बसे सुख मंदिर
1: ध्याए सदा मने अंदर।
0: जे प्रसाद गृह संग सुख बसना
1: आठ पै सिमरो तिस रसना।
0: जे प्रसाद रंग रस भोग
1: सदा ध्याए ध्यावन जोग।
0: जे प्रसाद पाठ पटंबर हडाव है जे प्रसाद सुख सेज सोई जाय
1: आठ पै ताका जस लवी जय।
0: जे प्रसाद तुझ सब को मान
1: को जस रसन बखाने।

0: सुरत।
1: जिह प्रसाद सब की गत होए,
0: नानक जाप जपे जप सोए।
1: आप जपाए जपै सो नाओ,
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ।
1: प्रभ कृपा ते होए प्रगास,
0: प्रभु दया ते कमल विगास।
1: प्रभ सो प्रसन्न बसै मन।

0: सो फल फला।
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग,
0: ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभु संग।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार,
0: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत,
0: ब्रह्म ज्ञानी अमृत त्यागत।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद,
0: ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदानंद।
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सह

0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता,
1: ब्रह्म ज्ञानी सा जीवे नहीं मरता,
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण प्रखर दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर।

0: संत के दुखन तेज सब जाए,
1: संत के दुखन नीचन जाए,
0: संत दुखी का थाओं को नाहे,
1: नानक संत पावे ता ओ भी कत पाए,
0: संत का निंदक महा

0: सच्चा सोई।
1: सब कट तिसके ओ करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार।
1: प्रभु की उस्तुत करो दिन रात,
0: इसे ध्यावो सांस गिरास।
1: सब कछ वरते तिस

0: सोदत सोदत सोदत सीजिया जब देखो तब सब किश मूल
1: सो सुखम सोई अस्तूल
0: नह किश जन्मै नह किश मरै।

0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपनी मृत गत
0: जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार
1: ना बूझ करत विचार
0: करते की मित न जाने किया
1: नानक ज्योतिष पावे सो करतिया
0: बिस्मन बिस्म पर।

0: प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिसे आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: बीस विश्वे गुर का मन मन
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाम।

0: संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए।
0: नानक जिस पावे तिस लए मलाए,
1: जिहबा एक उस्तत अनेक,
0: सत पुरख पूरन भावेक,
1: काहू बोल ना पहुंचत प्राणी,
0: आगम गोचर प्रभ निर्वाणी,
1: निराहार निर्वैर सुखदाई,
0: ताके कीमत किने ना पाए,
1: अनक भगत बंदन नित करे,
0: जानक मैं हृदय समरे,
1: सदबलिहारी सतगुर अपने,
0: नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने,
1: एहो हर रस पावे जन कोई,
0: अमृत पीवे अमर।

0: अवर उपाव सब मीत बिसार हो।
1: जनक अमृत में अर्तारो
0: कर्ण कारण सो प्रभ समरथ
1: निरकार कहो नाम
0: एहो तन संचो हो वो भगवंत
1: संजना का निर्मन मंत्र
0: एक आस रखो मन माहे
1: सर्व रोग नानक मिट जाए
0: जिस तन को चार

0: सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे,
1: प्रसाद को बिला लाखे।
0: सो क्यों बिसरे जे बिखते काढे,
1: जन्म जन्म का टूटा गांडे।
0: गुर पूरे तत है बुझाया,
1: नवा अपना नानक जानते आया।
0: साजन संत करो एहु काम,
1: मान त्याग जपो हर नाम।
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
1: आप जपो अवरे नाम जपावो।
0: भक्त भय तरी है संसार,
1: बिन भक्ति तन हो सीजार।
0: सर्व कल्याण सुख।

0: नानक आपस को आपे पहुँचा।
1: जय आप रचियो परपंच अकार,
0: कौन मैं के न विस्तार।
1: पाप पुन्न तै पई कहावत,
0: नरको स्वर्ग बसावत।

0: सास सास सिमरो गोबिंद
1: मन अंतर के उतरे चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संजना की तून मान मांग
0: आप छोड़ बेनती करो
1: सास संग अगन सागर तरो
0: हर तन के पर लिहो पंडार
1: नानक गुर पूरे नमस्कार
0: केम कुशल सहज आना।

0: प्रभु की उस्तुत करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चित
0: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो तन दान
0: सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए
1: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए स्थान
1: और ना होवे आवंजान
0: हर तन खाड़ चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद्ध नव निद

कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए।

मान सर हंस साध संगत परम हंस धर्म तुजा धर्मशाला चल आवही। जिमें मान सर ते मोती मिलते ने, दुध पीण लई मिलता है, इस तरह जेडे गुरु दे सिख ने वह धर्मशाला विच आउंदे ने, जिमें हंस मानसर चल के जांदे ने। गुरु दा सिख किते भी होवे उहदा जतन हुंदा वी संगत मिल जाए, उन्हें टाइम हल कर लेना हुंदा,

जी की फतेह। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी जिन्हां दे पावन पवित्र चरणा अंदर आनंद कार्ज की आरंभता की अरदास होई है, गुरु साहिब जी ने हुक्मनामा बख्शिश किया है। हुण भाई साहिब जी पल्ले दा शब्द पढ़नगे। बेनती है बेटी दे परिवार नूं, ओह बेटी नूं बेटे दा पल्ला फड़ाउण, उस तों बाद फिर लावां दा पाठ शुरू होवेगा। आओ बड़े प्यार नाल पल्ले दा शब्द सरवण करिए।

गाया हर विख राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्ब रहया पार पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाव चलाए अनहद शब्द वजाए जन नानक दूजी लाव चलाए

मन चौ पया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर तुन उपजे हर जपियह मस्तक भाग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै

अब मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पहाया

बारिक तुमरी कृपा मह सुख कोई ना जानी तुमरा उचे ते उचा पग सगल समग्री तुमरा सूतर तुमते हो ए सो आग्या तुमरी गत मित तुमही नानक दास सदा कुरबानी। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओवंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लाइन ते आए फिर अंगत गुरते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू समराओ श्री हर राय। श्री हर किशन ते आईया जिस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियां घर नौन दे आवै ताई सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे गुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां चिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता। तन्हा प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। चिन्ना सिंगा सिंगणियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटाई खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा संग निभाही तन्हा दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे गुरु। प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी कौ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैच पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान प्रोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वरे गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मां निताणियां दे तां नियोटियां दी ओट सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे पावन पवित्र चरणा विच अरदास बेनती है। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे शुभ आनंद का लड़का भाई जसटिन सिंह ढींडसा पिता सरदार दलजीत सिंह ढींडसा ते माता हरजीत कौर ढींडसा लड़की बीबा जीवन ज्योत कौर सपुत्री सरदार सुखपाल सिंह खोसा अते माता इंद्रजीत कौर खोसा सच्चे पातशाह तिन्हां दा शुभ आनंद कारज आप जी दी हजूरी अंदर गुरमरे आदा अनुसार संपूर्ण होए ने। लावां दा पाठ करदिआं कीर्तन करदिआं सेवा करदिआं आप जी दे दसरिआं पासों बेअंत भुल्लां बख्श देना कृपा करनी सुभाग परी जोड़ी दे सिर ते मेर भरिया हथ रखना जी परस्पर प्यार इतफाक दी दात नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शना अंग संग होके सहायता करनी दुखां दलिदरां दे नास करने सुखां दे प्रवेश करने जी दोनां ही परिवारां वल्लों आप जी नूं सुंदर पछाके अंगीकार कराए
ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਟੱਕਣੇ ਜੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਗ ਪਰਿਜੋੜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬ ਚਾਹ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੈ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰਹੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

हर कीरत तत बीचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे, जो जन पार ब्रह्म अपने कीने।

काष्ठराग्यो न गाय सांगरागणी ती सब पुत्र राघन के अठार दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

राणा रावना कूर रांगना तोंग फकीरा वारी आपो अपनी कोई ना बंदा तिहीरा क्या जाना केव मरेंगे कैसा मरना होए जेकर साहिब मनहुना विसरा ता सहला मरना होए। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसें गुरु का जन्म मरण दुख जा होवै सिबत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठा सचे पादशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवां

सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जे की एक ही पहमानी अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मंतानी डिगै ना डोला दृढ़ कर रहो पूर्ण होए त्रिपतानी ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिनकी बात बिलानी

0: कावन तदनो सहित समाधि अंदर कावन तदनो साध बिचारे
1: कावन तदनो जति सती संतोखी कावन तदनो वीर करारे
0: कावन तदनो पंडित पढ़न रखी सर जग जग वेदा नाले
1: कावन तदनो मोहन या मन मोहन स्वर्ग माछ पय आले
0: कावन तदनो रतन उपाय तेरे अड़सठ तीरथ नाले
1: कावन तदनो जोत महा

0: सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ।
1: हर जन के बड पाग बटेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास।
0: हर हर नाम मिले त्रिपतास है मिल संगत गुण परगास।
1: जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पाग हीन जम पास।
0: जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीव है त्रिग जीवास।
1: जिन हर जन सतगुर संगत

0: बनत पिन पिन तोहि तेती
1: तुमरा लखा न जाए पसारा कैबद सजा प्रथम संसारा
0: एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही पूपा
1: अंडज जेरज से तज कीनी उत्पज खान बहु रच दीनी
0: कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं समेट पयो संकर इकैठा
1: सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आज जुआज स्वरूप से अंपव
0: अपर अच्छा मेरी तुम करो सिख उपार असिख संगरो
1: दुष्ट जिते उठवाते उत्पाता सकल मलेच करो रणकाता
0: जे अस्तुर तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तह मरे
1: पुरख जवन पग

0: अपै संबत 1775 अर्धसहस्रपन्तेन कहिज
1: पादरसुदीयष्टमीरवारा तीरस्तद्रव ग्रंथ सुधारा
0: श्रीचित्रोपख्याने त्रयाचत्रे मंत्री पूप संवादे
1: 405 चरित्र समापत मस्त सौ

जाम गुरु होए वल तन है क्या गारव किजय। जाम गुरु होए वल लख बाहे क्या किजय। जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर। जाम गुरु होए वल शब्द साची सो सच है कर। जो गुरु गुरु अहनस जपै

अहनस सहज दर्शन परसय जन्म मरण होवै सिफत नूर अरसोहो कुरसोहो तुद डिठे सच्चे मल जन्म जन्म दी।

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साह संग जीओ। ए संत दशमेश गुरमत सेंटर दे बच्चे जिन्हां ने आप जी नूं श्री रारा साहिब जी का पाठ अते आरती का कीर्तन सरवण करवाया, हुण भाई बलजीत सिंह जी आप जी नूं कीर्तन सरवण करवाउणगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।